चर्ज रूप प्रभ पेखिया मेरा मन छोड़ न कत हो जाया था। मानक पायो रे पायो हर पूरा पाया था, मोल अमोल न पाया जाई कर कृपा गुरु देवाया था। रहाओ अदृष्ट अगोचर पार ब्रह्म मिल साधु अकत कथाया था। अनहद शब्द दसम द्वार वजियो तै अमृत नाम चुवाया था। तोट नाही मंत्रिसना बूझी अखुट भंडार समाया था। चरण चरण चरण गुरु सेवे अखड़ घड़ियो।

हर पढ़िए हर बुझिए गुरमति नाम उदारा गुर पूरे पूरी मत है पूरे शब्द विचारा आठसठ तीर्थ हर नाम है किलविख काटन हारा जल बिलोवै जल मत्थै तत लोड़े अंध अगयाना गुरमति दद मथिए अमृत पाइए नाम निधाना मन

साहिब जी, हर जुग जुग भक्त पाया पैज रखदा आया राम राजे, हर नाकश दुष्टर मारिया प्रहला तराया, अहंकारिया ने का पट दे नाम दे मुख लाया, जन नानक सार सेविया लेशनाया। श्लोक महला पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्लोक महला पहला, दुख दारू सुख रोग पे आ जा सुख ताम न हुई, तू करता करना मैं नहीं जाऊं करी न हुई, बलिहारी कुदरत वसया तेरा अंत ना जाए लखिया रहाओ, जात में जोत जोत में जाता कलकला भरपूर हा, तू सच्चा साहेब सिफत सवाल्यो जन कीती सो पार पया, कहो नानक करते किया बाता जो किश करना सो कर रहा सोदर। राग आसा महला पहला।

साचे नाम की लागे भूख उत भूखे खाए चलिए दुख सो क्यों विसरे मेरी माए साचा साहिब साचे नाए रहो साचे नाम की तिल बढ़ियाई आख थके कीमत नहीं पाई।

हर के जन सतगुर सतपुरखा बिनो करो गुर पास हम कीरे किरम सतगुर शरणाई कर दया नाम प्रगास।

जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सतसंगत।

तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आप खाना। जो सेवे जो सेवे तुझी, जन नानक तिन कुर्बाना। हर त्यावे हर त्यावे तुझी, से जन जुग में सुखवासी। से मुक्त पै जन हर त्याया जी,

जन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे का जन होई आसा महला पंजवां आसा महला चौथा तू करता सच्यार मेंडा साईं।

रक्षा श्री अस्तु जो करो रक्षा राख लियो मोए राखण हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता

चीटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृश कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने कट कट के पट पट की जाने जब उद करक करा करतारा प्रजा धरत तब दे अपारा जब या करख करत हो कबू

तीन कहे जय भाद्रो सुदी अष्टमी रविवार तीर्थ तद्रव ग्रंथ सुधारा एत श्री चरित्रो

पंथ चले तब जगत में जब तुम करो सहाय दोहरा जे जे तुमरे ध्यान को ने तुड़ते आए हैं संत अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवंत दोहरा काल पुरख की दे मो कोटक विष्णु महेश कोट इंद्र ब्रह्मा के तेरव सस क्रोर जलेस दोहरा राम।

बिशन भगत की ये फल होई आद व्यास वह सके ना कोई सम्मत सत्रह सहस पण जय अद सहस पण तीन कहे जय सम्मत सत्रह सहस पचावन हाड़ बदी प्रथम सुख धावन

अंतर गुरु आराधना जेवा जप गुरनाओ नेत्री सतगुरु पेखना सरवणी सुनना गुरनाओ सतगुर सेती रत्या दरगह पाइए ठाओ कौ नानक कृपा करे जिसनों ए वत दे।

संग पावजल तारियन साकत निंदक दुष्ट खिन माय विदारियन तिस साहिब की टेक नानक मने माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे तिस साहिब की टेक नानक मने माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की

ये अनत न काहूं डोले राम मन चिंदे अड़ा फल पाया हर प्रभ गुण नानक बाणी बोले राम गौर।

कीर्तन की समाप्ति है। गुरु अर्जन सच सिरजन हारा, रब सस किरण उदोत लंग। भाई गुरदास जी उन्हां दे बारे बयान करते ने, दो ही वारा मिलदियां ने उन्हां दियां लिखतां दे विच। एक गुरु अर्जन बिटों कुरबाणी, रहिंदे गुर दरियाओ विच मीन कुलीन हेत निर्बाणी। दर्शन देख पतंग ज्यों, ज्योति अंदर जोत समाणी। तो गुरु अर्जन देव महाराज जी ने ये सतगुरु का भाणा मिठा करके मनिया, और उन्होंने जबान चो सी भी नहीं निकली, हाए भी नहीं निकली। कहते हैं कि जो जीसस नू शहीद किया गया, यह क्रिश्चियनिटी दी डिवेलपमेंट का इन्ना कारण जोड़ा है वह शहादत है, क्राइस्ट की शहीदी वह रीजन है। जदों उन्हों क्रूसीफाई किया तो मेखा ठोकिया, दिल ठोके गए, तो उन्हें अरदास की परमात्मा के चरणों च कि इस पीड़ा नू, इस दुख नू, ए गॉड मेरे तो मैनू इस तो बचाओ, इस पीड़ा तो। उस तो बाद उन्हों की शहीदी होंगी है, पर दर्द तो पीड़ा तो कोई भी मुश्किल हालात जो बन, जो शहीदी का ये मसला बनता है, ये प्रीख्या होंगी है, बड़े बड़े डर जाते हैं, बड़े बड़े त्रह जाते हैं। पर गुरु अर्जन देव महाराज ने जो ये निशान छड़िया है पृथ्वी के उत्ते, सारे संसार दे विच इहदा डंका जिहड़ा सारी उम्र रहिंदी दुनिया तक ये वजदा रहेगा, क्योंकि आप ही आप नारायण कला धार जग मह परिवरे हो, और गुरु नानक की ज्योति गुरु अर्जन के विराजमान बैठी हुई, क्योंकि काया जी पलट जाती ज्योत उ रही है ना, उ गुरु नानक गुरु अर्जन के रूप के बैठे ने। आप निरंकार रूप होके गुरु अर्जन प्रतख हर, और गुरु अर्जन जिधर देखते ने सारे दे कोटक कोड़ा करोड़ा पाप जड़े ने, दुख जड़े ने वो मिट जाते हैं। तो ऐसे गुरु को बर्दाश्त करना हुकूमत लिए थोड़ा मुश्किल होता है, तो बड़े रीजन जड़े ने उन्होंने शहीदी दे। बाणी दे विच भी कहिंदे ने कि चार लेखक उस टाइम आए सन, काना छजू ते पीलू, ये भी चाहते सन कि साड़ी बाणी जड़ी है श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विच दर्ज जड़ी कर दिती जाए। तो गुरु ने बाणी सुनी तो उत्ते लिखिया सी, मैं ओही ओही रे, मैं ओही रे, मैं ओही रे। महाराज कहिंदे ते हंकार दी किरत है, इहदे विच निरंकार दा पैगाम है। ये जो तुरकी बाणी है ये परमात्मा की गल है। तुसी हजरत मुहम्मद साहब की कोई तारीफ लिख दो, कहिंदे किसी बंदे विशेष की असी कोई तारीफ नहीं लिखनी, मुसलमाना बारे गल की गई है श्री गुरु ग्रंथ साहब के विच, मुसलमान मोमदिल हो गए। तो ये पैगाम, ये संदेशा जिहड़ा है, ये परम उस जोत उस रब का संदेशा है जो धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने तरस करके साड़ी झोली पाया है। और कीर्तन की दात भी जी ने, यह भी गुरु अर्जन देव महाराज जी की सानू देन है, जो अज कीर्तन करन असी लायक होए हाँ। ये दाते जड़े ने धन गुरु अर्जन देव महाराज जी। तो आप जी कुरबाणी तिना गुरसिखा भाए भगत गुरपुरब करन दे तुसी मना रहे हो। सतगुरु सच्चे पातशाह कृपा रखे, उन्होंने बचन साडे हिरदे च वसन, ते साडा जन्म जिहड़ा है सफल हो सके। राम कली महला तीजा, आनंद क्यों का सतगुर प्रसाद।

सोरठ महला पंजवां गुर का शब्द रखवारे चौकी चौगिर्द हमारे राम नाम मन लागा जम लजाए कर आगा प्रभ जी तू मेरो सुखदाता बंधन काट करे मन निर्मल पूरन पुरख विदाता रहाओ नानक प्रभ विनासी ताकि सेव न बिरथी जासी अनद करह तेरे दासा जप पूरन होई आसा। बिलावल महला पंजवा ताती वाव न लग गई पार ब्रह्म शरणाई चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे न पाई सतगुर पूरा भेटिया जिन बनत बनाई राम नाम आखो दिया एका लिव लाई रहाओ राख लिए तिन रखन हार सब ब्याद मिटाई कहो नानक कृपा पई प्रभ पय सहाई। सलोक जय साधु गोविंद भजन कीर्तन नानक नीत अणा होना तूण है छुट है निकट न जाई हो दूत। सलोक महला पंजवा मन मह चितव चितवनी उदम करो उठ नीत हर कीर्तन का आहारो हर देहो नानक के मीत। सोहेला राग गौड़ी दीप की महला पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद जय कर किरत आखिय करते का होए विचारो तित कर गाहो सोहेला शिवरे हो सृजनहारो तुम गाहो मेरे निर्भव का सोहेला हवारी जित सोहेला सदा सुख होए रहाओ। नित नित जियड़े समालियन देखेगा देवनहार तेरे दाने कीमत ना पवे दिसता ते कौन समार संबत साहा लिखिया मिलकर पाहो तेल देहो सज्जन असिसड़िया ज्यो होवे साहिब स्यो मेल कर कर एह पहुंचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिय नानक से देह आवन। राग आसा महला पहला छ कर छ गुर छ उपदेश गुर गुरे को सनेक बाबा जय कर करते कीरत होए सो कर राख वड़ाई तोए रहाओ। विश्वे चसिया कड़िया पहरा थिति वारी महो होवा सूरज को रुतनेक नानक करते के केते वेस। राग तनासरी महला पहला गगन में थाल रव चंदीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मलियान लोच औण चौरो करे सगल बन राय फुलंत ज्योति कैसी आरती होए पौखन्ना तेरी आरती अनता शब्द वाजंत फेरी राहाओ। सहस तव नैन नन नैन है तोहे को सहस मूर्त नना एक तोही सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध इव चलत मोही सब मह ज्योत ज्योत है सोए तिस दे चानन सब मह चानन होए गुरसाखी ज्योत प्रगट होए ज्योत तिस पावे सो आरती होए। हार चरण कमल मकरंद लोभित मनो अंदिनो मोहे आही पियासा कृपा जल दे नानक सारंग को होए जाते तेरे नायवासा। राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बहु भरिया मिल साधु खंडल खंडा है पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हरलिव मंडल मंडा है कर साधु अंजुली पुन वड्डा है कर डंडोत पुन वड्डा है रहाओ। साकत हर साध न जानिया तिनंतर हाउ मैं कंडा है ज्यो ज्यो चला है चुभ है दुख पाव है जम काल सह सिर डंडा है। हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन्म मरण भव खंडा है अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर भव सोभ खंड ब्रह्मंडा है। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा है जन नानक नाम धार टेक है हर नाम में ही सुख मंडा है। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बिनंती सुनो मेरे मिता संत टहल की बेला ईहा खाट चलो हर लाहा आगे बसन सोहेला औद घटे दिन सरैणा रे मन गुर मिल काज सवारे रहाओ। एहो संसार विकार संसे मह तरहो ब्रह्म ज्ञानी जिस है जगाए पियावे एहो रस अगत कथा तिन जानी जाको आए सोई बिहाजो हर गुरते मन है बसेरा निज कर महल पाहो सुख।

वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु,

जे को अपनी शोभा लोरे सा संगे होमे छोरे जे को जन्म मरण ते डरे सा जना की सरनी परे जिस जन को प्रभु दर्श पे आसा नानक ताके बल बल जासा।

शर्म करे संग सहित पर हरे चंदन ले पुतारे तोये गर्त प्रीत पसम संग होए अंधकूप मैं पतत विकराल नानक काढ़ लियो प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात बाहर पेखे अंतर मन माया शब्द सुनाए किश करे पाया बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापे लो सुहान

दर्शन पद गावे गुंग जतन करे तो भी सुरभंग कै पिंगल पर्वत पर भवन नहीं हो तो आवस गवन करतार करना मैं दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा तेरे संसा सुहाविन चीत जो बैराए तसो प्रीत बलुआ के ग्रह भीतर वसे अंध खेल माया रंग रसे।

सोए जो जो कहे सुमुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता साजना किया चर्ज कथाशपरी। साध के संग मुख उजल होत साध संग मल सगली खोत साध के संग मिटे अभिमान साध के संग प्रटे सो ज्ञान साध के संग बुझे परम नेरा साध संग सब होत नवेरा साध के संग पाए नाम रतन साध के संग एक ऊपर जतन साध की महिमा बढ़ने कौन प्राणी नानक साध की शोभा ब्रह्माय समानी। साध के संग गोचर मिले साध के संग सदा पर फुले साध के संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग हुए सब की रेन साध के संग मनोहर बैन साध के संग न कतूं तावे साध संग हस्तित मन पावे साध के संग माया ते पैन नानक साध संग प्रभु सो प्रसन्न। साध संग दुश्मन सब मीत साधु कै संग महापुनीत साध संग कैस्यो नहीं बहर साध के संग न बिगा पैर साध के संग ना ही को मंदा साध संग जाने परमानंदा साध के संग ना ही होता साध के संग तजे सब आप

संग सरपर निस्तर सा संग लगे प्रमीटा साधु कै संग घट घटा सा संग पे आज्ञाकारी सा संग गत पे मारी साध के संग मिटे सब रोग नानु साध पेटे संजोग साध की महिमा भेद न जाने जेता सुने जेता वखियाने साध की उपमा ते गुण ते दूर साध की उपमा रही भरपूर साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा ऊचते ऊंची साध की शोभा मूचते मूची साध की शोभा साध बाने आई नानक साध प्रभ भेद ना पाई श्लोक मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेखे किस बिन कोई।

पव का सहज सुभाओ। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागे जला। ब्रह्म ज्ञानी कै मन होय प्रकाश, जैसे धर उपरे आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सतर समान, ब्रह्म ज्ञानी के नाय मान।

आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संगेता ब्रह्म ज्ञानी कह हो चिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र।

निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। श्लोक उर्दारे जो अंतर नाम सर्व में पिखे भगवान, निमख निमख ठाकर नमस्कारे। नानक ओ आपर्श सगल निस्तारे। अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस मन में, प्रीत नंजन दर्श पर दरिया। रूप न पेखे नेतर सादगी टैल संत संगेत, कर्ण ना सुने काउ की निंदा। सब ते जाने आपस को मंदा।

मंत्र सर्व को ज्ञान। चौं वर्णा में जपे को नाम, जो जो जपे तिसकी गत होए, साध संग पावे जन कोए, कर कृपा अंतर उधारे, पस प्रेत मुक्त पात्र को तारे।

श्लोक मुस्त करे अनेक जाने अंत न पारावार नानक रचना प्रवरचे बहुविधे अंग प्रकार अष्टपदी कई कोड़ होए पुजारी कई कोड़ चार व्यवहारी कई कोड़ पह तीर्थवासी कई कोड़ वन पर मैं उदासी कई कोड़ वेद के स्रोते कई कोड़ तबीजरोते कई कोड़ आत्म ध्यान धार है कई कोड़ कव का विचारे कई कोड़ नवतन नाम ते आवे नानक करते का अंत न पावे कई कोड़ पै अभमानी कई कोड़ अंध ज्ञानी कई कोड़ किरपन कठोर कई कोड़ पैग आत्म निकोर कई कोड़ पर दर्व कोहरे कई कोड़ पर दुख न कहे कई कोड़ माया शरमाए कई कोड़ पर देश परमाए जिस जित लाभ होते ते लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोड़ सिद्ध जति जोगी कई कोड़ राजे रस भोगी कई कोड़ पंखी सर्प उपाए कई कोड़ पात्र बिरख निप जाए कई कोड़ पौन पानी बेसंतर कई कोड़ देश भूमंडल कई कोड़ सचियर सूर्ण खतर कई कोड़ देवदान मिंद्र सिर छतर सर्व समग्री अपने सूत धारे नान जिस जिस भावे तिस तिस निस्तारे कई कोड़ राज तम सातक कई कोड़ वेद प्राण सिमरत रसास्त्र कई कोड़ किए रतन समान कई कोड़ नाना प्रकार जंत कई कोड़ किए चिरजीवे कई कोड़ गिरी मेर स्वर्ण थीवे कई कोड़ जाके निवसाज कई कोड़ भूत प्रे सुकर मिनगाज सब ते नेरे सबों ते दूर नानक आवल तिरहा भरपूर कई कोड़ पताल के वासी कई कोड़ नरक स्वर्ग निवासी कई कोड़ जन्मे जीवे मरे कई कोड़ बहु जोनी फिरे कई कोड़ बैठती खाए कई कोड़ काले तक पाए

लागी कह कोड प्रभु को खोजंते आत्म में पार ब्रह्म लहंते। कई कोड़ दर्शन प्रप्यास दिन को मिलियो प्रभु अविनाश। कई कोड़ मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग। जिनको हुए आप सो प्रसन्न नान ते जन सदा धन धन। कई कोड़ खाणी अरखंड कई कोड़ काश ब्रह्मंड। कई कोड़ हुए अवतार कई जुगत कीनो विस्तार। कई बार पसरे उपसार सदा सदा एक एक ओंकार। कई कोड़ कीने वपात प्रभु ते हुए ब्रह्मा समाध तक अंत न जाने को हुए आपे आप नान प्रसोए। कई कोड़ पारम के दास तिन हो ते आदम प्रगास। कई कोड़ तत के बेते सदा निहारे को नेत्रे। कई कोड़ नाम रस पीवे अमर पे सत सत जीवे। कई कोड़ नाम गुण गावे आत्म रस सह समावे। अपने जन को साथ साथ समारे नानक है परमेश्वर के प्यारे। श्लोक कर्ण कांड प्रवे कह दूसर नाही कोय। नानक तिस बलिहाल ने जल तल मैयर सोए अश्वदीप।

प्रसाद नानक सच कह कबो पंडित करव ख्यान कबो मोन धारी लावे ध्यान कबो तट तीर्थ स्नान कबो सत सतगुरु ज्ञान।

एक आपे एक आपे अनेक मरे ना मिनसे आवे ना जाए नान सदी रहा समाए आप उपदेशे समझे आप आपे रचया सब कह साथ आप किनो अपन विस्तार सबके सुसकाओ करने आर उसते पहन कहो किशो थान तनंत्र कैसोए अपने चलते आप करने आर कौत करे रंग पार मन में आप मन अपने माए नानक कीमत कहन जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुरु प्रसाद किने वख्यानी सच सच सत सब कीना कोण मदे किन बिरले चीना भला भला भला तिर रूप अत सुंदर अपार अनू निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी कर कर सुनी सर्वमुखियाणी पवित्र पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपे नानक मन प्रीत

क्रमाए। संतन के दुखन तृष्णा में जले, संत के दुखन सब को चले, संत के दुखन तेज सब जाए, संत के दुखन नीच नीच आए, संत दुखी का था को नाए, नान संत पावे ताए भी गत पाए। संत का निंदक माताए, संत का निंदक कंटक न पाए, संत का निंदक माते आरा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राजते हीन, संत का निंदक दुखियार दीन। संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा विजोग, संत की निंदा दुख में दोग, नान संत पावे ता उसका भी होए मोख, संत का दुखी सदा पवित्र, संत का दुखी किसे का निमित्त, संत के दुखी को डान लगे, संत के दुखी को सब त्यागे, संत का दुखी महंकारी, संत का दुखी सदा विकारी, संत का दुखी जन्मे मरे, संत की दुख न सुखते डरे, संत के दुखी को नाई ठाओ, नान संत पावे ता लय मिलाए, संत का दुखी अद बीते टूटे, संत का दुखी किते काज ना पहुंचे, संत के दुखी को ध्यान परमाई है, संत का दुखी अवजड़ पाई है।

संत का दुखी यम बिल्लाए जन जल बहून मछली त्रिभुराए संत का दुखी भूखा ने राजा ज्यो पाप के तन नहीं त्रापे संत का दुखी छुटे अकेला ज्यों बाढ़ तिल खेत माए दुहेला संत का दुखी धर्म ते रहत संत का दुखी सदमिथिया कहत किरत निंद का तुर ही पया नान जो तिज पावे सोई थे संत का दुखी बिगड़ रूप जाए संत के दुखी को दर गए मिले सजाए संत का दुखी सदा सहकाई है संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है संत के दुखी के पूजन आसा संत का दुखी उड़ चले नरसा संत के दुख न दिष्टे कोए जैसा पावे तैसा कोई होए बया कीर्तन मेटे कोए नान जाने सच्चा सोए साव कर तिसके ओ करने हार सा तिसको नमस्कार प्रभु की उस्तत करो दिन रात ते आवो सास खरा सब कुछ वरते तिसका किया जैसा करे तैसा को थिया

तिसका हुकम सुखोए तिसका नाम रख कंट परोए सिमर सिमर सिमर परसोए नानक बिघन लागे कोए उस्तत मन में करन कार करमन मेरे सत व्यवहार।

राजा के संग तरे संसार जन का सेवक सोवड़ भागी जन के संग एक लिव लागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुरु प्रसाद नानक फल पावे श्लोक आदि सच जुगाद सच है बै सच नानक होसी पै सच आष्टपदी चरण सत सत प्रसनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत त्यावनहार आप सत सत सबधारी आपे गुण आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभ भक्ता सुरत सत सत जय सुनता भूजनहार को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए।

सोजन सर्व दुख का दाता, तिसकी सन सर्व सुख पावे, तिसके न सब पाप मिटावे, अवर सियान बसगली शाड़, तिस जन की तू सेवा लाग, आवन जान न होवी तेरा नानक, तिस जन के पूजो सद पैरा। श्लोक सत पुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका नाओ, तिसके संग सिख उदरे, नानक हर गुण गाओ। अष्टपदी सतगुर सिक्की करे बिरधपाल, सेव को गुर सदा दयाल, सिक्की गुर दुरमत मल हिरे, गुर वचने हर नाम उचरे, सतगुर सिक्के बंधन काटे, गुर का सिख विकार ते हटे। सतगुर सिको नाम तन दे, गुर का सिख बटभागी है, सतगुर सिक्का हल्द पल्द सवारे, नानक सतगुर सिको जी नाल समारे, गुर के ग्रह सेवक जो रहे, गुर की आज्ञा मन में सहे, आप उसको करकश ना जनावे, हर हर नाम हृदय सत्यावे। मन बेचे सतगुर के पास, ते सेवक के कार्ज रा, सेवा करत हो इन्ने कामी, तिसको उद प्राप्त स्वामी, अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले, बीस विश्व गुर का वन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने, सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ, अनक बार गुर को बल जाओ, सर्व निधान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता। ब्रह्म जन जन्म पार ब्रह्म एक, आप नहीं किस परम, सह सियाण भलिया न जाइए, नानक ऐसा गुरु भागी पाइय। सफल दर्शन पेखत पुनीत, पर सतचन गात निर्मल रीत, भेट संग्राम गुण रवे पार ब्रह्म की, दर गए गवे सुनकर बचन करन, गाने मन संतोख आत्म पतिया ने, पूरा गुरु आख्यो जागा मंत्र, अमृत पेख से पेखे हुए संत, गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस पावे तिस लय मिलाए, जे पाए कुस्त अनेक, सत पुरख पूर्ण विवेक, काहू बोल न पोचित प्राणी, गम गोचर परम निर्वाणी, निराह निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत किन न पाई, अनक भगत बंधन नित करे, जनक मन हृदय सिमरे, सत बलिहारी सतगुरु अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभु जपने।

जनको गोविंद भक्तनार सिर उपर ठाडा गुरसूरा नानक ताके कार्ज पूरा मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट दर्शन पेख दूदर श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनु समल दर्शन सुंदर हर रूप

एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसरना जाई तीर्थ नावा जित भावा मिण पाने के नाई करी जेती सिरठ उपाई वेखा मिण करमा के मिलाए लई मत विच रतन जवाहर माणिक जेक गुर की सिख सुने गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसरना जाई

सुनेसात संतो ज्ञान सुने सरकाय सुनान सुने पर पावहमान सुने लाग्या सह ध्यान नानक भगत सदा विगास सुने दो पाव का नास सुने सरा गुणा खेगा सुने शेख पीर पातुसा

ऐसा नाम निरंजन होए देखो मन जाने मन कोए मन सुरत होवे मन बुद्ध मन सकल पवन की सुद मन मोह चटाना खाए मन जम कै साथ न जाए ऐसा नाम निरंजन होए देखो मन जाने मन कोए मन मार्ग ठाक न पाए मन पशुओं प्रगट जाए मन मग न चले पंथ मन धर्म सिद्धि संबंध ऐसा नाम निरंजन होए देखो मन जाने मन कोए मन पाम मुख द्वार मन परवार ऐसा रार मन तर तर गुरु सिख मन नानक पवह न भिख ऐसा नाम निरंजन होए देखो मन जाने मन कोए

असंख जाप असंख भाव असंख पूजा असंख तप ताव असंग रनमुख वेद पाठ असंग जोग मन रह उदास असंग भगत गुण ज्ञान विचार असंग सती असंग दातार असंग सुरम पाखसार असंग मोल विलाय तार कुदर

पवह समुद्र न जानिय समुद्र सा सुल्तान गिरा से तिमाल तन केड़ी तुल न हो नि जित मन हो न विसराय।

जियो। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री वाहेगुरु जी की फतेह। जाप श्री मुखवाक पातशाही दसवीं।

प्रजं प्रजाच्छन्द नमो सर्वमान्य समस्ते निदाने नमो देव देवे भिखिय भेवे नमो काल काले नमो सर्वपाले नमो सर्वगुणे नमो सर्वभौणे नंगी नाते संगी प्रमाथे नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे नंगी नामे समस्ते स्वरूपे प्रभंगी परमाते समस्ते विभूते कलंक बिना ने कलंकी स्वरूपे नमो राज रेश्रम परम रूपे नमो जोग जवेश्रम परम सिद्धे नमो राज रेश्रम परम बिरदे नमो शस्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञात नमो लोक माता पेखी परमे भोगी भुगते नमो जोग जवेश्रम परम जुते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत परे देवे सुधर्मे नमो रोग हरता नमो रूपे नमो शाशा नमो भू भूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस् स्नान नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र नमो शिष्य नमो तंत्र तंत्र सदा सचिदानंद सर्व प्रणासी नूपे रूपे समस्त निवासी सदा सतदा बुद्धदा बिरद करता परम परम परमेश पुष्पालन सदा सर्वदा सिद्धाता दयालन शेदी भेदी नाम काम समस्त उपराजी समस्त सद्धम तेरा जोर चाची छंद जलयां थलयां पीतें पैहें प्रभुएं जूएं देसें पेसें प्रजंग प्रजा चंद का देवादे नंदी स्वरूपे नमो सर्वमान्य समस्ते निदान्य नमस्वं निरार्थे नमस्वं परमाते नमस्वं गंजे नमस्वं पंजे नमस्तम काले नमस्तम अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो शाह नमो मामाय नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोगे नमो सो सोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीत नमो सर्वपीत नमो सर्व ज्ञान नमो परमतान नमो सर्व मंत्र नमो सर्व जंत्र नमो सर्व दर्शन नमो सर्व कीर्तन नमो सर्व रंगे त्रिवंगे अनंगे नमो जीव जीव नमो बीज बीजे खिजे भिजे समस्त प्रसिजे कृपाल स्वरूप कर्म प्रणासी सदा सर्वदा हृदय सिद्ध निवासी चर प्रसन्न प्रसाद आमृत करमे मृत धर्मे खल जोगे चल भोगे चल राजे टल साजे खल धर्म लख कर्म सर्म दाता सर्म ज्ञाता सर्म भाने सर्म माने सर्म प्राण सर्म त्राण

आप रूपमेक अनुस्तदेक पुरखवदूत करो गंजन सर्व भंजन आदि रूप सूत अंगहीन भंगनात्मेक पुरख पार सर्व लायक सर्व कायक सर्व कोपृत पार सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेख सर्व शास्त्र न जाने जय रूप रंग रेख परम वेद प्राण जाके नेत भक्त नित कोट सुन प्राण शास्त्र ना भी बोचत मद पार छंत वै प्रसाद

सर्वं पर है, सर्वं कर है, सर्ववासी है, सर्वनाशी है, करुणाकर है, विश्वंबर है, सर्वेश्वर है, जगदेश्वर है, ब्रह्मंड से है, कलखंड से है, परते पर है, करुणाकर है, जपा जपे तपा तपे, कृत कृत है, मृत मृत है, अमृत अमृत है, कर्ण कृत है, कृत कृत है, धरणी तृत है, अमतेश्वर है, परमेश्वर है, कृत कृत है, मृत मृत है, अजब कृत है, मृत मृत है, नरनायक है, खलकायक है,

अनाथ परमाते जो नी मुनि नरागे नरंगे नरूपे नरेखे कर्म परम गंजे लेखे भजंग प्रजा छंद नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासे गंजल नामे समस्तल निवासे निकाम विभूते समस्तल स्वरूपे को कर्म प्रणासी सुधर्म विभूते सदा सचिदानंद सतरम प्रणासी क्रीमल कुनिंदा समस्तल निवासी अजाय विभूते गजाय विकनी में हरियं करियं क्रीम रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वं स्वं सर्वदा सर्वयुक्ते

श्री पद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जान निदान चलेंगे। वीर पार बडे वरियार चर सार की धार पछैया तोरत देश मलिंद मवासन मातिक जान के मान मातिक जान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तो नहार सुबात नहीं चक चार लवैया साहिब श्री सब को सन्ना एक जाचक नेक सो एक दवैया दान देव निंदन सचर

कूर क्रिया और जो सभी जाग श्री भगवान को भेद ना पायो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवे वाच बेनती चौपे अमरी करो हा दे रक्षा पूर्ण होए चित की सदव चन्न रे हमारा अपना जान को वृद्ध पारा अमरे दुस्वे तुम काबू आप आदे मोह मचावो सगी विषय मोर परवारा सेव सिख सवे करतारा मोर छन कर दे करिये सब बैरन को आसंगरिये पूर्ण होए हमारी आसा दूर भंकी रहे प्यासा। तुम्हें शाड़ कोई अवर ना त्याऊं जो बरचाऊं सो तुम ते पाऊं से उस सिख मारे तारिया चुन चुन सदर मारे मारिया बादे मुझे बरिया मन काल का त्रास न मरिया हूँ जो सदा हमारे पच्छा श्रीय तुझो।

काल जोगी सब की ओ वेदराज ब्रह्मा ज्योति यो जन्म काल सब लोग सुवाराम। नमस्कार है ताय हमारा जन्म काल सब जगत बनायो देव दैत जशन बजायो आदि अंत कह अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तिसी को हमारी। सकल प्रजा जिने आप सुवारी सिवकन को सब गुण सो दियो शत्रन को मन मोद की ओ कड़ कड़ के अंतर की जान पले बरे की पीर पछाण चीटी ते कुंचर सुला सब पर कृपा दृष कर भूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने

0: कड़ी हसबे गोपी अमेरिकन गोपाल गहने पावन पानी में संतर चंद सुरजवता सगली धरती मार तन वर्त सुन जंजा नानक मुझसे ज्ञान बिहूनी खाए गया जब कान भला पहला
1: पायल थे लिल्लत जंगल।

पौड़ी सच्चा साहेब एक तो दिन सचो सच वरताया जिस्तु दे तिस मिले सच जिस्तु दे तिस मिले सच तिनी सच कमाया सतगुरु मिले सच पाया जिनके हृदय सच बसाया मूर्ख सच ना जानी।

सच्चता पर जानी जाने ते सच्चा होए, कूड़ की मल तेरे तन करे है छत होए। सच्चता पर जानी जा सच तेरे प्यार, नाओ सुन मर रह सीता पाए मोक द्वार। सच्चता पर जानी जा।

त्रिशतम सूरशतम सूदशतम प्राकृतः सर्वशतम एक शतम जे को जाने पे हो नानकता का दास है सोई नरेंद्र देव महला।

पाठ्यपुस्तक संध्या बादल शिलकू सबक समाधन मुख चूट पे पुकल सारंग तय पाल तिहाल बेचारंग गल माला तिलक ले लाटंग दो धोती वस्त्र कपाटंग जय जानस ब्रह्मं कर्मं सब होकर।

अतः वाह पवह समुंद न जानिय समुंद शाह सुल्तान गिरहा सेती माल तन कीड़ी तुल न होमनी जे तिस मनो ना विसर है अंत न सिफती कहण ना अंत अंत न करण देण ना अंत अंत न वेखण सुनण ना अंत

ऊपर ऊंचा नाव, ए बड़ ऊंचा होवे कोए, तिस ऊंचे कौ जाने सोए, जे बड़े आप जाने आप नानक नदरी करमी दात।

अमोल गुण अमोल व्यापार, अमोल व्यापारिये अमोल भंडार, अमोल आवह अमोल ले जाहे, अमोल पाए अमुला समाहे, अमोल धर्म अमोल दीवान, अमोल तोल अमोल परवान, अमोल बख्शीस अमोल निशान, अमोल कर्म।

तसायादेश आद अनिल अनाद अनाहते जोग जोग एको वेश आसन लोए लोए पंडार जो किछ पाया सो एका बार कर कर वेखै सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश दिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जोग जोग एको वेश एक दूजी बव लख होहे लख होवे लख वीस लख लख गेड़ा आखिय है एक नाम जगदीश इतराहे पत पव

करता तेरे सब किछ है, जिस दे सो पावे सदा शिव सलाह तेरी, ना मन वसावे नाम जिन कह मन वसिया, वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सचे साहिब, क्या नाहीं कर तेरा, साचा नाम मेरा आधारु, साच नाम उधार मेरा, जिन भुखा सब गवाईया कर सांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाईया, सदा कुरबान कीता गुरु विटो, जिस दिया वडियाईया कहे नानक सुनो संतो, सब धरो पे आरो, साचा नाम मेरा आधारु, वाजे पंच शब्द तित कर सुभागे, कर सुभागे शब्द वाजे, कला जित कर धारिया, पंच दूत तुद वस कीते, काल कंठ कुमारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन को, से नाम हर कह लागे, कहे नानक तै सुख हुआ, तित कर अनहद वाजे, साची लिवे बिन देहन मानी, देहन मानी लिवे बाजो, क्या करे विचारिया, तुद बाज समरथ कोय नाही, कृपा कर बनवारिया, ए सुनाओ हर थाउ नाही, शब्द लाग सवारिया, कहे नानक लिवे बाजो, क्या करे विचारिया, आनंद आनंद सब को कहे, आनंद गुरु ते जानिया, जानिया आनंद सदा गुर ते, कृपा करे प्यारिया, कर कृपा किलविख कटे, ज्ञान अंजन सारिया, अंदरों जिनका मोह टुटा, तिनका सब सचे सवारिया, कहे नानक कहो आनंद है, आनंद गुर ते जानिया, बाबा जे तू दे सोई जन पावे, पावे तां सोजन देह, जिसनोर क्या करे विचारिया, एक भरम भूले फिरे दह देस, एक नाम लाग सवारिया, गुर प्रसादी मन भया निर्मल, जिन्ना पाणा पावे, कहे नानक जिस दे प्यारे, सोई जन पावे, आवो संत प्यारे हो, अकथ की करें कहानी अकथ केरी, कित दुआरे पाई है, तन मन धन सब सौंप गुर को, हुक्म मन्या पाई है, हुक्म मन्यो गुरु के रा, गावो सच्ची बाणी, कहे नानक सुनो संतो, कथियो अकथ कहानी, ए मन चंचला चतुराई किने ना पाया, चतुराई ना पाया किने, तू सुन मन मेरे आ, ए माया मोहनी जिनेत परम पुलाया, माया ता मोनी तिने कीती, जिन ठगौली पाईया, कुर्बान कीता तिस विटो, जिन मोह मीठा लाया, कहे नानक मन चंचल चतुराई किने ना पाया, ए मन प्यारिया तू सदा सच समाले, एहो कटंब तू जे देखदा चले नाही तेरे नाल, साथ तेरे चले नाही तिस नाल, क्यों चित लाइए, ऐसा काम मूले ना कीचे, जित अंत पछोताइए।

सदा सच संभाले। अगमे अगोचरा तेरा अंत ना पाया, अंतु ना पाया किने तेरा, अपना आप तू जाने। जी जनता सब खेल तेरा, क्या को आख बखाण है, आखे ता वेख सब तू है, जन जगते उपाया। कहे नानक तू सदा अगम है, तेरा अंत ना

सच्चा मन वसाया दी जनता सब तो दिपा एक वेख परसन आया लभ लोभ हंकार चूका सतगुरु भला पाया कहे नानक जिसनु आप तुठा तिन्ह अमृत गुर ते।

हर हर त्याहे आऊं। करमी सहज नाय उपजै विण सहजै सहसा ना जाय। नह जाय सहसा किते संयम रहे कर्म कमाए। सहसे जीव मली न कित संयम धोता जाय। मन धोवो शब्द लागो हर स्यों रहो चित लाए। कहे नान गुर प्रसादी सहज उपजे सहसा विजाय।

मरण मनो विसारिया वेदा में नामी उत्तम सो सुने नाही फिरे ज्यों बेतालिया कहे नानक जिन साच तजिया कूड़े लागे इतनी जन्म जुए हारिया जियो निर्मल बाहरो निर्मल बाहरों ता निर्मल जियो निर्मल सत गुर ते करणी कुमाणी कूड़ की सोहे पहुंचे नाही मनसा सच समाणी जन्म

आवे बिन सतगुर मुगत ना पाए। फिर मुगत पाए लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए। कहे नानक विचार देखो बिन सतगुर मुगत ना पाए। आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी। बाणी तां गावो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी। जिन को नदर करम होवे

ਬਾਣੀ कहे नानक सदा गाव होए सच्ची बाणी सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी तां कच्ची सतगुरु बाजों होर कच्ची बाणी कहंदे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आख बखाणी हर हर नित करे रसना कह कछु ना जानी चित जिन का हिर लया माया बोलन भैरवानी कहे नानक सतगुरु बाजों होर कच्ची बाणी गुर का शब्द रतन हीरे दित जड़ाओ शब्द रतन जित मन लागा हो आसमाओ शब्द सेती मन मिलिया सच्चे लाया पाओ आपे हीरा रतन आपे जिसनू दे बुझाए कहे नानक शब्द रतन है हीरा दित जड़ाओ

गुरमुख किस बुझाई तोड़े बंधन हुभे मुक्त शब्द मन वसाई। गुरमुख जिसनु आप करे सो वह एक सस्यों लिवलाय कहे नानक आप करता पे हुकुम बुझाई। सिमर शास्त्र पुन पा विचार दे ततय सारण जानी ततय सारण जानी गुरु बाजो ततय सारण जानी। तेही गुणी संसार भ्रम सुता सुत्या रहन विहानी गुर कृपा ते से जन जागे जिना हर मन वसिया बोले अमृत बाणी। कहे नानक सो तत पाए जिसनु अण दिन हर लिव लागे जागत रहन विहानी। माता के उदर मैं व्रत पाल करे सो क्यों मनो विसारिये मनो क्यों वसारिये वड दाता जी अगन मैं हर पंचावे उसनो कोह पोहे ना सके जिसनो अपनी लिव लावे अपनी लिव आपे लाए। गुरमुख सदा संभालिय कहे नानके वरदाता सो क्यों मनो वसारी है जैसी अग्न उदर मैं तैसी बार माया। माया अग्न सब एको जे ही करता है खेल रचाया जां तिस भाणा ता जमया परवार भला पाया। लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमृत वरताया माया जित हर विसरे मोह उपजे।

हर गाओ मंगल नित सखिय सोग दुख ना व्यापे गुर चरण लागे दिन सुभागे अपना पिर जापे अनहत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो कहे।

मन धन द्वारा सेवा सफली करनी चढ़दियां कला बख्शनिया गुरमत अनुसार मनोकामना पूरिया करनिया। छेवें श्री खंड पाठ साहिब की सेवा भाई तीर सिंह बीबी हरजिंदर कौर समूह परिवार वालों सच्चे पातशाह जी सिद्धू परिवार वालों आप जी का शुकराना करदिया होया तंदुरुस्तियां वास्ते करवाई गई है कृपा करनी जी तंदुरुस्तियां चढ़दियां कला बख्शनिया किरत कमाइया विच वाधे पाउणे समूह परिवार दियां गुरमत अनुसार मनोकामना पूरिया करनिया। पातशाह जी परसों रोज तो लैके परिवारां वालों लंगरां विच बेअंत तरह दियां सेवावां कीतियां गईयां हन सब सच्चे पातशाह सेवावां सफलियां करनिया चढ़दियां कला बख्शनिया इसे तरह अपने दर कर दियां सेवावां दे नाल निवाजना। पातशाह जीओ छे श्री अखंड पाठ साहिब जी की अरदास संपूर्ण जपजी साहिब आनंद साहिब जी की अरदास भुल चुक दी खिमा बख्श।